0: पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा वापस लें, लोड शेडिंग ख़त्म करें ताकि अवाम को सहूलियत मिले, ताकि हम मिलकर दुनिया को एक मजबूत पैगाम दे सकें। ये लाहौर में आज ये पहला मुजाहरा है, तो अगले चंद दिनों के बाद पंजाब के बाकी ज़िला के अंदर भी इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा, और जब तक हम आवाम की आवाज़ और आवाम के मुतालबे जो ना पूरे ज़ोर अंदाज से नहीं रख पाएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा।
1: Rising LNG, diesel and furnace oil prices add to the woes. Per unit electricity prices have also shot up by 155% over the last 3 years. Power outages have cost Pakistan's economy more than $4 billion annually. Small and medium enterprises are particularly impacted due to their small profit margins.
2: इसके कमेंट्स वगैरह देखे ना,
3: ठीक है,
2: ये भी रिसीव इससे कर लो गिनती करके,
3: ठीक है,
2: हैंगिंग लूप नहीं लगाया इसको,
3: लगवा दो।
4: मेरा नाम सैयद शुएब अली जाफरी है और मेरा एक स्टिचिंग यूनिट है। मैं लोकल क्रीम ब्लॉक मार्केट का और कुछ ब्रांड्स हैं उनका साथ काम करता हूँ।
2: यार इसको सही तरह सेट कर लिया आपने, पानी पानी मार साहब सुनाओ।
5: जी सर,
2: उसी तो
5: मैंने कल
2: दे रहे
5: सो। सर ये लोड शेडिंग की वजह ना मेरे 3 घंटे वैसे सुबह से ज़ाया हो गए ना, लोड शेडिंग की वजह ना लेट हो रहा काम, लोड शेडिंग का बड़ा मसला पे है।
2: ये 3 घंटों में ना ये काम जो आधे घंटे काम 3 घंटों में मेरा हो रहा।
5: जी मेरी गल सुनो, कोई इजाफी टाइम ला लो, पार्टी ने तो गल नहीं सुनी है।
1: Power cuts have resulted in an average output loss of 25% across Pakistan, particularly affecting industries like textiles and machinery. This equates to roughly 2.5% of the country's GDP.
4: देखें, बिजली तो हमें ना होने के बराबर चाहिए होती है, लेकिन अगर बिजली आएगी नहीं तो तब भी हमारा काम बिल्कुल सफल होगा ना। चलें, ये काम आप लाइट पे डालते ही नहीं हैं, हम पैटर्न बना लेते हैं। अब जब उसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए हमें लाइट चाहिए, कटिंग के लिए लाइट चाहिए। उसके बाद जब वो कटिंग हो जाएगी, फिर जितना भी काम है उसके बाद सारा लाइट का काम। लोड शेडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो आप 1-2 वीक ऊपर चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें 25% पेनल्टी पड़ती है, 20% पेनल्टी पड़ती है, और जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं उनका घर जो उनसे है वो उस हिसाब से नहीं चलता। एक वर्कर है, उसने यहाँ पर 3 मैक्सिमम 1000 या 2000 रुपये का काम करना, ठीक है, अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो 1000 रुपये लेके जाएगा।
5: देखिए, हर चीज़ पैसे पे नहीं आप डिपेंड करते, आप का इमेज का नुकसान हो, पार्टीज आपको दोबारा काम नहीं देती। देखिए, पार्टीज को काम चाहिए, पार्टी उसी को काम देगी जिसके पास ये सारी फैसिलिटेटेड चीजें होंगी ना।
1: कंट्री वाइड पावर शॉर्टफॉल हैज रीच्ड 4500 मेगावाट्स, एनफ पावर टू लाइट अप 4 मिलियन होम्स।
6: इन द पास्ट 1 मंथ देयर हैव बीन अबाउट 2 वीक्स बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ एलएनजी इंपोर्ट एंड डिसरप्शंस कमिंग इन फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ and also lower hydel generation due to lesser requirement of the provinces to take water out of the dams, because our hydel power the first priority is irrigation, so however much irrigation water is required from these dams, that's how much hydel power is produced. So we had a situation in the last 2 weeks of April where hydel was low, there wasn't any LNG, and so there were disruptions, and this is going to also impact the cost of energy for this particular month and until the US-Iran war issue is resolved.
1: An unreliable power grid has forced a people-driven revolution. The Hall Road market in Lahore is the commercial heart of Pakistan's solar boom. Since 2017, Pakistan has imported 58 gigawatts worth of solar panels, making Pakistan one of the world's biggest importers.
7: Government ki price itni zyada high hai ki har banda chahe wo uske paas ek plate ki paise ho na to wo ek plate hi buy karne aa jata hai. Lahore ke andar ko takriban 4 se 5 zone hai jahan solar beaker hai. Jaise aap Halol le lein, aap Johor Town le lein, aap DHA chale jaye, aap Thokar wali side pe chale jaye, different zone ban gaye. Har taraf ab solar beaker hai. Halanki Pakistan mein cheezon ke rate badhe hain, mehngai zyada hui hai. चीजों के रेट बढ़ने चाहिए थे सोलर महंगा होना चाहिए था लेकिन सोलर सस्ता हुआ है वो इसलिए क्योंकि नई से नई चीज आ रही है नेता
8: 18 प्लेट 650 वाली है
7: टडियां लगी है ना
8: हां जी
7: 12 लगी है 8 और पानी
8: 12 लगी है 6 साडियां आ गई है वो आज लग जानी है
7: यानी कि प्लेटा कैंसिल कर और थे स्टैंड स्टैंड से आप बनाओगे
8: नहीं वो स्ट्रक्चर बन गए अलग
7: से बन गया
9: इधर नाल लिथियम बैटरी है
7: हां देखो हूं चल रहे दो चार दिन बाद तुम कहोगे यार घर का साडा बल्ब सड़ जाता पहला नहीं सड़ता हूँ सड़न लग गया क्यों करंट साफ नहीं गा एरा करंट होता है फिल्टर करंट होता है लोग क्यों लगवाते हैं ऐसी वजह तो लगवाते हैं कि यारी लाइफ ज्यादा है जो सोलर है ना ये 100% इम्पोर्टेड आइटम है प्लेट्स इन्वर्टर लिथियम बैटरी 100% चाइना के इम्पोर्ट की जाती है अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनको एजुकेट किया जाए या थोड़ा सा उनकी तलीम या थोड़ा सा उनको समझाया जाए या अगर फौरन आप ट्रेनिंग दें उन्हें तो वो अच्छा कर सकते हैं काम उसके अंदर हाइब्रिड भी बना सकते हैं एज अ बिजनेस प्लान देखा जाए तो सोलर प्रॉफिटेबल चीज़ है सोलर अगर प्रॉफिटेबल ना होता तो जगह जगह शॉप्स नहीं बनती और सोलर की वजह से मेरे ख्याल से लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इनकम आई है और काफ़ी फ़ायदा हुआ है लोगों को
1: As Pakistan's population grows, electricity demand has risen by 21% since 2024. That additional demand has been met entirely by solar power. Rising solar demand has also created new economic opportunities, with green jobs expected to continue growing through 2030.
10: इस सोलर रश को लेके कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे सक्सेस इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिनसे दूसरे ममालिक स्पेशली जो ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सीख सकते हैं द सोलर पैनल्स डिड नॉट जस्ट डिलीवर चीप इलेक्ट्रिसिटी टू द कंट्री They helped mobilize 17 to 18 billion US dollars of investments, and that too without any kind of, you know, support from the financial market. And at the same time, the solar sector helped create 500,000 jobs, and it was happening around the time when nothing else was really working in the country, and then the economy was in a really bad shape.

0: Pakistan's solar revolution is no longer confined to homes and villages. It is now transforming the country's industries. A 394-kilowatt solar system now powers the Khawaja Flour and General Mills factory in Hassan Abdal. In a country where high energy costs and frequent power cuts challenge businesses every day, this factory owner has become almost energy independent.
1: This solar system, main jo wire iske panel lage hue hai na, to wahan se iski sari wires ja rahi hai. Is ye fir aage se jo hai na, ye system sara ye inverter lage hue hai. Theek hai ji, ye inme sari ye bijli jo hai is inme jati hai, fir ye aage is waqt mil jo hai na wo chal rahi hai. और सारी बिजली जो है तकरीबन इस वक्त 300 किलोवाट सोलर दे रहा है और बाकी जो है ना 100 किलोवाट जो हम वापस दे रहे हैं.
0: The mill has significantly lower operational expenses than its competitors.
2: ये जब 2000 में मैंने मिल चलाई उस वक्त भी बिजली की लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम था और बिजली महंगी भी थी लेकिन बिल जो हमारा 20 25 30 लाख आता था वो कभी आधा हो गया कभी जीरो हो गया एक बचत इसमें काफी हुई है एक तो हमारा बिजली का बिल तकरीबन जीरो हो गया और जैसे कि आपको पता है कि बिजली बहुत महंगी भी हो गई है तो इस सोलर की वजह से हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने में आसानी हो रही है क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंस है वो कम हो गया है फिर सोलर ही है जो इस इंडस्ट्री को बचाएगा इंडस्ट्री के लिए ये एक हिसाब से ब्लड का जो है वो दर्जा रखता है कि जिस तरह जिसके लिए ब्लड हमारा ज़रूरी है या सांस लेना ज़रूरी है या सोलर भी इस वक्त जो है वो एक सांस लेने वाली बात है इससे इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी और लोग जो है इसमें और भी आ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है
0: Just a decade,

0: इंटरनल सर्किट से उसको पे करंट अप्लाई किया हुआ है और दूसरा कनेक्शन हमने इसके आउटर फ्रेम से लिया है और पानी से लिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो अंडर वेट कंडीशंस बाहर तो नहीं आ रही है।
1: Pakistan's extreme climate puts solar technology to the test. From extreme heat to intense monsoons and windstorms, rigorous stress testing ensures solar panels can withstand these conditions and perform reliably.
0: ये हमारी जो मशीन है इसके अंदर बेसिकली हम सिमुलेट करते हैं कि अगर पैनल हमारा जो है वो फील्ड के अंदर लगा हुआ है, माउंटेड है और जलाबारी है, हेल स्टॉर्म है, तो ऊपर जो आइस बॉल्स फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर उनको सस्टेन करने की कि ये ब्रेक ना हो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो हम उसको सिमुलेट करने के लिए हमने जो हमारी जो जो लिटरेचर बताता है कि अप टू 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ भी आइस बॉल जो है वो इसको हिट कर सकता है। और ये मशीन जो है ये पूरे पैनल के ऊपर जो रिकमेंडेड एरियाज़ हैं हम प्रोग्राम बना देंगे और उन तमाम एरियाज़ के ऊपर जाके ये उस सेट वेलोसिटी के साथ हिट करेगा और हम देखेंगे कि इसने सस्टेन किया है कि नहीं किया। और इसके बेसिकली प्री और आफ्टर के जो है वो टेस्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये टेस्ट इसने पास किया कि फेल किया।
1: Improved quality and wider adoption are transforming the lives of vulnerable communities across the country.
2: We are the champions of Right Channel
3: Gold 905. Ms. Cheng was very scary. She was ultra strict.
2: It was her who made me who I am today.
4: She probably started laughing, lah. Or maybe she scold me. Okay.
2: I've never ever said thank you.
5: Sorry, guys. I'm going to get some coffee. Y'all want?
6: Thank you so much.
7: Nice to see you again, Ms. Cheng.
8: Season finale of Finding. Tonight on CNA.
9: AI made it cheaper for her to build an app. But what's the cost of going without a salary? When your best-known dish barely makes money, this Gen Z is finding new ways to earn. Plus, couples pay them to film weddings on their phones. Can that really be a full-time job? On Money Mind, Wednesday on CNA.
10: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
11: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
12: How could this woman be a killer?
13: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
14: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
13: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
8: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਜੀ ਘੁੰਮਾ ਦਾ
1: Liquefied natural gas from the Middle East that contributes a fifth of Pakistan's energy mix is disrupted. Coupled with a dramatic surge in summer electricity demand, Pakistanis are facing power cuts on an average of 7 hours per day. When power plants cannot produce electricity to match demand, load shedding or power cuts are implemented by the government to ration supply.
2: पेट्रोल महंगा कर दिया गया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई बिजली आती है तो गैस चली जाती है और फिर इस आवाम पे कि जिनकी दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी जाती हैं उन लोगों को टैक्सेस की यलगार कर दी गई है लोगों का जीना महाल हो चुका लोग इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं कि लोग इस हुकूमत के खिलाफ निकले महंगी बिजली महंगी गैस महंगा पेट्रोल
3: पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा वापस लें लोड शेडिंग खत्म करें ताकि अवाम को सहूलियत मिले ताकि हम मिलकर दुनिया को एक मजबूत पैगाम दे सकें ये लाहौर में आज ये पहला मुजाहरा है तो अगले चंद दिनों के बाद पंजाब के बाकी ज़िला के अंदर भी इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा और जब तक हम आवाम की आवाज़ और आवाम के मुतालबे जो ना पूरे ज़ोर अंदाज से नहीं रख पाएंगे ये सिलसिला जारी रहेगा
1: Rising LNG, diesel and furnace oil prices add to the woes. Per unit electricity prices have also shot up by 155% over the last 3 years. Power outages have cost Pakistan's economy more than $4 billion annually. Small and medium enterprises are particularly impacted due to their small profit margins.
4: इसके कमेंट्स वगैरह देखे ना
5: ठीक
4: है ये भी रिसीव इससे कर लो गिनती करके
5: ठीक है
4: हैंगिंग लूप नहीं लगाया इसको
5: ठीक है लगवा
6: मेरा नाम सैयद शुएब अली जाफरी है और मेरा एक स्टिचिंग यूनिट है मैं लोकल क्रीम ब्लॉक मार्केट का और कुछ ब्रांड्स हैं उनका साथ काम करता हूँ
4: यार इसको सही तरह सेट कर लिया था आपने
7: बड़ा मसला पाया
8: ये 3 घंटों में ना ये काम जो आधे घंटे काम 3 घंटों में मेरा हो रहा
7: जी मेरी गल सुनो कोई इजाफी टाइम ला लो पार्टी ने तो गल नहीं सुनी
1: Power cuts have resulted in an average output loss of 25% across Pakistan, particularly affecting industries like textiles and machinery. This equates to roughly 2.5% of the country's GDP.
6: देखें बिजली तो हमें ना होने के बराबर चाहिए होती है लेकिन अगर बिजली आएगी नहीं तो तब भी हमारा काम बिल्कुल सफल होगा ना चलें ये काम आप लाइट पे डालते ही नहीं हैं हम पैटर्न बना लेते हैं अब जब उसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए हमें लाइट चाहिए कटिंग के लिए लाइट चाहिए उसके बाद जब वो कटिंग हो जाएगी फिर जितना भी काम है उसके बाद सारा लाइट का काम लोड शेडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो आप 1 वीक 2 वीक ऊपर चली जाती हैं जिसकी वजह से हमें 25% पेनल्टी पड़ती है 20% पेनल्टी पड़ती है और जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं उनका घर जो उनसे है वो उस हिसाब से नहीं चलता एक वर्कर है उसने यहाँ पर 1,000 या 2,000 रुपये का काम करना ठीक है अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो 1,000 रुपये लेके जाएगा
9: देखिए हर चीज़ पैसे पे नहीं आप डिपेंड करते आप का इमेज का नुकसान हो पार्टीज आपको दोबारा काम नहीं देती देखिए पार्टीज को काम चाहिए पार्टी उसी को काम देगी जिसके पास ये सारी फैसिलिटेटेड चीजें होंगी ना
1: कंट्री वाइड पावर शॉर्टफॉल हैज रीच्ड 4

0: 1,500 megawatts, enough power to light up 4 million homes.
1: In the past 1 month, there have been about 2 weeks because of lack of LNG import and disruptions coming in from the Strait of Hormuz, and also lower hydel generation due to lesser requirement of the provinces to take water out of the dams. Because our hydel power, the first priority is irrigation. So however much irrigation water is required from these dams, that's how much hydel power is produced. So we had a situation in the last 2 weeks of April where hydel was low, there wasn't any LNG, and so there were disruptions. And this is going to also impact the cost of energy for this particular month and until the US-Iran war issue is resolved.
0: An unreliable power grid has forced a people-driven revolution. The Hall Road Market in Lahore is the commercial heart of Pakistan's solar boom. Since 2017, Pakistan has imported 58 gigawatts worth of solar panels, making Pakistan one of the world's biggest importers.
2: Government ki price itni zyada high hai ki har banda chahe wo uske paas ek plate ki paise ho na to wo ek plate hi buy karne aa jata. Lahore ke andar takriban 4 se 5 zone hai jahan solar bikra hai. Jaise aap Halol le lein, aap Johor Town le lein, aap DHA chale jaye, आप ठोकर वाली साइड पे चले जाएं, डिफरेंट जोन बन गए अब, हर तरफ अब सोलर बिक रहा है. हालांकि पाकिस्तान में चीज़ों के रेट बढ़े हैं, महंगाई ज़्यादा हुई है, चीज़ों के रेट बढ़ने चाहिए थे, सोलर महंगा होना चाहिए था, लेकिन सोलर सस्ता हुआ है, वो इसलिए क्योंकि नई से नई चीज़ आ रही है.
3: 18 प्लेटा 650
2: लगी है ना?
3: हाँ जी.
2: 12
3: ਲੱਗੀਆਂ 8 ਹੋਰ ਪਾਣੀ 12 ਲੱਗੀਆਂ 6 ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ
2: ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਟਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ
3: ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ
2: ਬਣ ਗਿਆ
4: ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਹੈ
3: ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
2: 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਲਬ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਹੁਣ ਸੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰੰਟ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਵੇ ਤੋਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ जो सोलर है ना ये 100% इम्पोर्टेड आइटम है प्लेट्स इन्वर्टर लिथियम बैटरी 100% चाइना के इम्पोर्ट की जाती है अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनको एजुकेट किया जाए या थोड़ा सा उनकी तलीम या थोड़ा सा उनको समझाया जाए या अगर फौरन आप ट्रेनिंग दें उन्हें तो वो अच्छा कर सकते हैं काम उसके अंदर हाइब्रिड भी बना सकते हैं एज अ बिजनेस मैन देखा जाए तो सोलर प्रॉफिटेबल चीज़ है सोलर अगर प्रॉफिटेबल ना होता तो जगह जगह शॉप्स नहीं बनती और सोलर की वजह से मेरे ख्याल से लोगों के पास काफी ज्यादा इनकम आई है और काफी फायदा हुआ है लोगों को
0: As Pakistan's population grows, electricity demand has risen by 21% since 2024. That additional demand has been met entirely by solar power. Rising solar demand has also created new economic opportunities. With green jobs expected to continue growing through 2030.
5: इस सोलर रश को लेके कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे सक्सेस इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिनसे दूसरे ममालिक स्पेशली जो ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सीख सकते हैं Solar panels did not just deliver cheap electricity to the country. They helped mobilize 17 to 18 billion US dollars of investments, and that too without any kind of, you know, support from the financial market. And at the same time, the solar sector helped create 500,000 jobs and it was happening around the time when nothing else was really working in the country and then the economy was in a really bad shape.

0: ये जब 2000 में मैंने मिल चलाई उस वक्त भी बिजली की लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम था और बिजली महंगी भी थी, लेकिन बिल जो हमारा 20-25-30 लाख आता था वो कभी आधा हो गया कभी ज़ीरो हो गया, एक बचत इसमें काफ़ी हुई है। एक तो हमारा बिजली का बिल तकरीबन ज़ीरो हो गया है और जैसे कि आपको पता है कि बिजली बहुत महंगी भी हो गई है तो इस सोलर की वजह से हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने में आसानी हो रही है क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंस है वो कम हो गया है। तो सोलर ही है जो इस इंडस्ट्री को बचाएगा। इंडस्ट्री के लिए ये एक हिसाब से ब्लड का जो है वो दर्जा रखता है कि जिस तरह जिसके लिए ब्लड हमारा ज़रूरी है या सांस लेना ज़रूरी है या सोलर भी इस वक्त जो है वो एक सांस लेने वाली बात है। इससे इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी और लोग जो है इसमें और भी आ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है।
1: Decade, Pakistan has built a solar industry that is expanding rapidly. Today, more than 200 solar panel, inverter and battery manufacturers from all over Pakistan have descended in Lahore to launch new products.
2: उसकी सस्ती है ना कराची रेट दे रहा है $23,000 कंबाइन हमारा कंपैक्ट यूनिट है ऑल वन में ही है
3: लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है यार।
1: The solar boom was fueled by an influx of low-cost solar panels from China. It's helped save billions in expensive fossil fuel imports.
3: But in Pakistan, usually people go for cost, which should not be the case in solar panel, inverter, or batteries, because these equipments give you energy backup for a longer period. Quality should be the first and foremost priority for any customer who is going for solar solution. We have installed around 51 gigawatt in Pakistan and the potential is 2800 gigawatt. If we install 100 gigawatt, right, 10 to 12 billion dollar saving. We are wasting so much money in electricity bills, agriculture and industry. So just imagine how can we save so much from energy and we can balance our trade deficit. The more cost effective it is, the more competitive we are. The saving the individual do, it can be invested in kids' education, health and food. It will reduce carbon emission, bring Pakistan out of debt, and it will result in prosperous Pakistan.
1: Private rooftop solar production is now Pakistan's single largest source of electricity, accounting for more than 25% of total production in 2025, ahead of gas, coal, hydro, and nuclear.
3: It was a perfect storm. There were so many variables which actually lead to this revolution. Everybody was interested to import solar equipment. The prices were collapsed in China, so that actually gave an opportunity to the investors. So all the investors jumped in to gain that profit. People had the buying power. In last 5 to 8 years, we imported around $22 billion solar equipment. So that's not by government, that's by us people. It's a people-driven revolution. So all these things combinedly resulted this revolution.
1: The Pakistan government is now increasing quality controls by establishing the Pakistan Korea Testing Laboratory, the first state-of-the-art facility for testing imported solar panels in Pakistan.
4: On average, 17,000 megawatt जो है वो import हो रहे हैं solar panels each year. तो जब इतनी bulk quantity के अंदर एक चीज़ आ रही है तो अगर उसकी quality compromise हो जाए तो technology defame हो सकती है और उसके consequences बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. तो हमने उसकी quality को ensure करने के लिए हमारा plan ये है कि हमने इसको जो है वो mandatory लिस्ट ऑफ आइटम्स में जिनकी हमने क्वालिटी कंट्रोल करनी है हमारे रेगुलेटर ने, उसके अंदर हमने इसको शामिल करना है। और फिर जो एक उनकी स्कीम है फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग स्कीम, उसके अंदर ये होता है कि जो रेगुलेटर है उसका इंस्पेक्टर जाता है मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटी को विज़िट करता है, वहाँ से रैंडम सैंपल पिक करता है, उन रैंडम सैंपल्स को जो है वो हमारे पास वो लैब में भेजेगा, हम उसके ऊपर कोई 3 months लॉन्ग जो है वो रिग्रस टेस्टिंग करेंगे एज़ पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स।
1: Operating under the Pakistan Standards and Quality Control Authority, every imported consignment of solar panels undergoes rigorous testing. Today, one panel is undergoing a wet test.
4: Standard हमें recommend करता है कि आप इस चीज को भी test करें और ensure करें कि जब बारिश हो रही है panel wet है तो under wet conditions, ऐसा तो नहीं है कि जो इंटरनल इसका जो करंट है वो आउटर फ्रेम तक उसकी एक्सेस हो, शॉर्ट हो जाए, और जो इसको यूज़र है कोई इसको हाथ लगाता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का अंदेशा तो नहीं है, कि हम इसको पूरा डिप करके पानी के अंदर और फिर जो है वो इसको देखते हैं कि एक कनेक्शन हमने सर्किट से लिया हुआ है इसके इंटरनल सर्किट से, उसको पे करंट अप्लाई किया हुआ है, और दूसरा कनेक्शन हमने इसके आउटर फ्रेम से लिया है और पानी से लिया है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो अंडर वेट कंडीशंस बाहर तो नहीं आ रही है।
1: Pakistan's extreme climate puts solar technology to the test. From extreme heat to intense monsoons and windstorms, rigorous stress testing ensures solar panels can withstand these conditions and perform reliably.
4: ये हमारी जो मशीन है इसके अंदर बेसिकली हम सिमुलेट करते हैं कि अगर पैनल हमारा जो है वो फील्ड के अंदर लगा हुआ है, माउंटेड है, और जालाबारी है, हेल स्टॉर्म है, तो ऊपर जो आइस बॉल्स फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर उनको सस्टेन करने की कि ये ब्रेक ना हो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, तो हम उसको सिमुलेट करने के लिए हमने जो हमारी जो जो लिटरेचर बताता है कि अप टू 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ भी आइस बॉल जो है वो इसको हिट कर सकता है, और ये मशीन जो है ये पूरे पैनल के ऊपर जो रिकमेंडेड एरियाज़ हैं हम प्रोग्राम बना देंगे और उन तमाम एरियाज़ के ऊपर जाके ये उस सेट वेलोसिटी के साथ हिट करेगा और हम देखेंगे कि इसने सस्टेन किया है कि नहीं किया, और इसके बेसिकली प्री और आफ्टर के जो है वो टेस्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये टेस्ट इसने पास किया कि फेल किया।
1: Improved quality and wider adoption are transforming the lives of vulnerable communities across the country.
5: From the untold stories of 9/11 to a chilling trail of murder and Asia's push beyond oil, uncover the powerful stories reshaping our world this September on CNA.
6: I thought I was going to die.
5: 25 years after 9/11, unravel the story of those trapped inside Windows on the World, the iconic restaurant on the top floors of the World Trade Center's North Tower.
7: People were in the building. We had to race to get them out.
5: Accused of poisoning the victims with cyanide, Death Loans traces the deadly trail behind one of Thailand's most shocking murder cases.
8: Everyone was confused. How could this woman be a killer?
5: Across South and Southeast Asia, communities are pioneering a life without oil, using solar, biogas, electric vehicles, and local alternatives to build a cleaner, more resilient future.
9: Part of the inspiration is really the rising fuel costs.
5: This September on CNA.
10: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
11: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
10: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.